कोई भी नहीं घर में और आप दोनों बैठ के गपशप लगा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, ये तरीका भी नहीं। और क्योंकि बाज लड़कियों को मैंने देखा है कि वो पर्दे की आड़ लेकर बिल्कुल अपने बेडरूम में बंद होकर बैठ जाती हैं कि जी खाना ला दो, जी फलाने ये कर दो, फलाने ये कर दो। ये इंतहाई गलत तर्ज अमल है। जब आप एक बहू की हैसियत से किसी घर में मौजूद हैं तो खाना पकाना भी होगा आपको। मैंने इसी हिजाब के साथ पकाया भी है, निकाला भी है, सर्व भी किया, बर्तन भी धोए हैं, झाड़ू पे लगाए, सब कुछ किया, अपना काम किया, जरा सा घूंघट खींच लिया। दूसरा यह है कि साथ साथ एहसास भी दिलाया कि वो बिला वजह इंटरफियर ना करें। देखिए कि आपके अपने अंदर एक बैरियर होता है, उससे आगे ना बढ़ने दें दूसरे को। इस तरह की पोलाइटली बात मत करें कि दूसरे को एक खाम खा की शेर मिले। और करख्तगी में भी बात ना करें, नॉर्मल रवैये में आप बात करें। लेन देन भी होगा, काम भी होगा, मेहमान के तौर पर भी वो आएंगे, तो उसमें अपनी हदूद आपने खुद कायम कर ली, इसमें कोई और आपको फतवा नहीं दे सकता। और बाज़ुकत घर इतने छोटे होते हैं कि एक ही घर में अगर उनकी किसी जरूरत से आपके शहर में आए तो आप ही के घर में वो आ रहे हैं, तो उसमें अब ये तो नहीं आप कर सकेंगे कि बिल्कुल अलग कर दें उनको। अगर मुमकिन हो तो अलग ही हो, लेकिन अगर ना हो सके तो फिर यह है कि अपना काम काज अपनी जरूरत के मुताबिक करते चले जाएं। अब हमने मैंने देखा कि भाभी और देवर बैठ के लतीफे सुना रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। बाज़ुकत पंजाब में मैंने ये रवाज तक देखा कि छोटा देवर है तो उसको दुल्हन की गोद में बिठाते हैं, और इसी तरह जूती छुपाई और पता नहीं दूध पिलाई। और ये खासतौर पर जो शादी के बाद की रस्में होती हैं, दुल्हन बनी बैठी औरत और उसका घुटना एक नामहरम आके पकड़ रहा है, ये कहाँ का की हया और कहाँ का कल्चर है? इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शहर और वालदैन हिजाब न लेने दें तो क्या किया जाए? उन्हें कहिए कि आप हमारे साथ कब्र में चलेंगे और हमारे साथ अल्लाह के यहाँ खड़े होंगे और हमारी जगह पर आप जवाब देंगे, ठीक? और अगर हमको पकड़ होने लगी तो आप हमारी जगह पकड़े जाएंगे। आपको मालूम है ना वो रिवायत की एक औरत अपने साथ चार मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप, शौहर, बेटा, भाई। क्या हम बाकी सारे काम इनकी मर्जी से करते हैं? नहीं। जिस दिन अपने अंदर जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, जिस दिन आपके अंदर यकीन आ गया कि ये अल्लाह का हुक्म है और इसमें मेरी भलाई है, उस दिन सब जंजीरें कट जाएंगी। और जब तक ये नहीं आता तो आप अपनी जंजीर में खुद बंधे हुए हैं। जिस चीज को इंसान हकीकत में करने का इरादा कर ले वहां कोई मुश्किल मुश्किल नहीं, और जो काम आप करना ना चाहें वो कर सकते भी हो तो कुछ नहीं करते। बहुत सी खवातीन मुझे बताती हैं हमको ये डर था पता नहीं हमारे हस्बैंड क्या कहेंगे, और हमने किया तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। खुद साख्ता खौफ है जो शैतान हमारे दिलों में डालता है। ऐसे देवर जो बच्चे से थे और हमारे साथ रह रहे हों, उनके जवान होने पर उनके साथ क्या मामला होगा? क्या उनको बच्चों या भाइयों की तरह लिया जा सकता है? अपने बच्चे भी अगर बड़े हो जाएं, और अपने बच्चे अगर बच्चे हैं तो भी जब आप सतर की हालत में नहीं या जीनत की हालत में हैं तो वो भी इजाजत लेकर आएं, और जब वो बड़े हो जाएं, ये देखिए ये वाज़े जवाब कुरान ने आपको दिया है, वइज़ा बलगल अत्फालु मिनकुमुल हुलुमा फलयस्तअज़िनु कमस्तअज़नल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई सिर्फ वो भाई होता है जिसको माने जाना हो या बाप की तरफ से, या फिर रजाई भाई जिसने साथ दूध पिया हो। बस हमारे माशरे में जो मुंह बोले भाइयों की किस्में हैं, कोई भाई नहीं है। किसी से भी हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं है वरना खुद को मुसीबत में डालेंगे। हाँ, अखलाकी तौर पर आप किसी दुकानदार से कुछ ले रहे हैं तो आप उसको भाई कह के पुकार सकते हैं, भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे, ताकि एक अच्छी फीलिंग आए। क्योंकि किसी को भाई कह देना इस तरह, उसमें एक बावकार और एक एहतराम और एक पाकीजा बात हो जाती है। लेकिन भाई कहना और भाई समझना और भाई समझकर फिर मजीद हदें अल्लाह की तोड़ते चले जाना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो देवर को भाई कह सकते हैं आप, लेकिन वो भाई नहीं है, वो देवर है। क्या देवर के अलावा जेठ से भी पर्दा है? क्या वो किसी और नस्ल से ताल्लुक रखता है? अब आप कहते हैं कि मैं सवालों के जवाब न दिया करूं, हाँ? अगर देवर या बहनोई हाथ मिलाएं तो क्या करें? वही करें जो किसी भी गैर मर्द से हाथ मिलाते हुए करना चाहिए। आपको मैंने शायद पहले बताया कि मैं जब पहले दिन अपनी पीएचडी के लिए गई तो मेरे सुपरवाइजर जो था उसने, सबकी आदत है और बहुत सी मुसलमान लड़कियों से मिलाते हैं हाथ, तो वो

0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soch Ki, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: आउज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। सामान्य नाज़रीन, हमारे प्रोग्रामों की तफसीर कुछ इस तरह होगी, रूटीन्स के लोगो होंगे, किताब होगा, नात होगी, और उसके बाद यहाँ जो हमारे लोकल मेहमान होते हैं, हमारे थिंक टैंक या हमारे मेहमान जो इस हफ्ते के होते हैं, जो पहले से हमारे साथ उनका टाइम तय होता है, उनसे बातचीत करेंगे। डेनमार्क की सियासत, कम्यून की सियासत, हमारी लोकल सियासत, हमारे लोकल प्रोग्राम जो लोकल प्रोग्राम होते हैं मुख्तलिफ हवालों से, मौसम पर भी बात करेंगे और बीमारियों पर भी बात करेंगे, सियासी बीमारियों की भी बात करेंगे, इलाज की तरफ भी जो है बढ़ने की कोशिश करेंगे, और लेकिन कम्यून के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं उनकी भी बात करेंगे और जो वाक़यात होते हैं उन पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। समय नाज़रीन, ये कानून जितने बनते हैं किन की वजह से बनते हैं? कानून बनते हैं आपकी हिफाजत, जानो माल की हिफाजत के लिए बनते हैं। जब कानून तोड़े जाते हैं तो फिर कानून डेफिनेट वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं। जब सख्त होते हैं तो फिर लोग शोर डालते हैं कि जी फलां कानून बन गया, फलां कानून बन गया, ये सख्तियां कर दी। जब हम आए थे तो उस वक्त सख्तियां नहीं थी, जब उस वक्त आए थे तो आप कानून का एहतराम करते थे, सख्तियां भी कम थी। जब कानून का एहतराम करना छोड़ दिया तो फिर सख्तियां भी आ जाती हैं। तो कानून तो इसी तरह चलता है ना, कानून मेरी मर्ज़ी या किसी दूसरे की मर्ज़ी से तो नहीं चलेगा, कानून बनाए जाते हैं और कानून तब्दील भी होते रहते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट में जब लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती है, आपको अक्सरियत चाहिए होती है, जमहूरियत का नाम ही यही है। इसके अलावा आप लोग या हम लोग सियासी यहाँ की डेनमार्क की सियासी जमातों के मेंबर नहीं बनते, अपना असर रसूख बढ़ाते नहीं हैं, पार्टियों में जाते नहीं हैं। एक ही दिन हम मेंबर बनना चाहते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हम पार्लियामेंट के मेंबर भी बन जाएं, कम्यून के मेंबर भी बन जाएं, हम मेयर भी बन जाएं, डिप्टी मेयर भी बन जाएं, लेकिन हमने काम नहीं करना, हमने अपनी ज़ात को आगे बढ़ाना है। हमें क्या लगे कम्युनिटी क्या कर रही है? आप देखें, एक ज़माने में अगर जिन लोगों को याद है, पुराने लोगों को याद है कि जब जहाज़ का सफ़र किया जाता था तो महफूज तरीन सफ़र होता था। उसके बाद जब कानून तोड़ने की बातें शुरू हुई, आपको एयरपोर्ट पर सहूलियात मिलती थी, आपको इमिग्रेशन में सहूलियात मिलती थी, शॉपिंग करते थे आपको सहूलियात मिलती थी, एकदम आप टिकट करा के अपनी बोर्डिंग करा के जब सीधे आगे चले जाते थे, बस छोटी मोटी चेकिंग होती थी। लेकिन अब आपको जो चेकिंग की जाती है उसकी वजह क्या, उसकी वजूहत क्या है? हमारे अपने कसूर। देखना, ये जो जाकर जहाज अगवा करना, उसके बाद जो कुछ चीज़ें गलत चीज़ें लेकर जाना, कारोबार करना, दूसरी चीज़ों गलत चीज़ों का कानून के जो कानूनी मना है, तो जब ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं उस बंदे का जब निकल जाता है तो उसका फ़ायदा होता है, नुकसान किसका होता है? तो समझ नाज़रीन, इन लोगों पर आपको भी नज़र रखनी चाहिए कि ये जो क्रिमिनलिटी है फिर उन्हीं को बेचारों को तकलीफ़ होती है, फिर वो मुसीबत में मारे जाते हैं, लंबी लंबी सज़ाएँ हो जाती हैं, फिर कानून को गालियाँ दी जाती हैं, सियासतदानों को गालियाँ दी जाती हैं, और हम फिर अपना भी अपना जो है तबसरा करना शुरू कर देते हैं। तो हमें समझ नाज़रीन, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की हमें सियासत करनी चाहिए, कानून का एहतराम करना चाहिए। जहाँ भी कानून का एहतराम किया जाता है आपको सहूलियात मिलती हैं, जहाँ भी अच्छे काम होते हैं आपको सहूलियात मिलती हैं। अगर कोई कानून को तोड़ेगा, दुनिया के किसी हिस्से में भी तोड़ेगा, तो कानून हरकत में आता है। जो मर्जी आप कर लें, कानून से कोई नहीं लड़ सकता, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

और हमारी आयतों को झूठ समझकर जुटलाते रहते थे और हमने हर चीज को लिखकर जब्त कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।